0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: तुलुवलाडी। रेडियो सारंग 107.8 FM उंदु रंग रंग द बदक इत्ते तुलु प्रसारा।

पात्र वर्ग जुड़ेत नेलविटा नोरोना जिल्फा जुड़ीत साकर्ण क्लिटा नोरोना नेबुकडनेजर असिरिया सोराय रोशन डिसोजा होलोफेरनेस असिरिया रायसो सेनाधिपति लेस्ली फेरावो असिरिया सैनिक रोशन फोनसेका निशान डिसिल्वा अने स्टालोन डिसिल्वा उज्जिया बेतुलिया सो मुकेली रॉय सिक्वेरा काब्रिस प्रकाश फोंटेरो कार्मिस विजय मिरांदा बेतुलियाचे सैनिक मैक्लिन फर्नांडिस अनि एलेर अक्योर अमोरितनसो सेनाधिकारी नीलेश रस्किना नास मरुला गिब्सन दिव्या पेन्ना विजेता आल्फ्रेड टीना पशावो संगीत साइमन पायस बजाल उजवाड क्रिस्टी आवाज अजित इलेक्ट्रिकल्स जप्पो वेस पिंत्रावणे गिरियप्पा इडिया समाज सूचक ग्रेट्टा करवालो अनि मरिटा डिसोजा सहकार मना देख मैक्सिम सोजो विगार जप्पो फिरगस रचन मना देख बाप रोनी सेराओ निर्देशन अल्विन मिरांदा जप्पो।